0: जज्बा।
1: ओके सुशांत केसी को हिंदी की जादूगरी तुमसा ना देखा कभी कति मीठो शब्द स्वर त गजबै छ। वेरी टैलेंटेड नेपाली सिंगर को बयान गरेर साथ दिएछ। यो गीतलाई म फेरि

जस लपा नेपाल वासया ज्याझो नेपाले निने त सनादिपि सकलसित दुनुगलनसे लसकुसा जे रश्मिला पुजापति थौ नेपाल संबत झिन्छा सर्व पी खुद अनला थोर नवमी मंगलबार न्याबले मंगलबार थि ज्याझो नेपाले जुना अलिनामी भाजुमेज पी ज्याझो नेपाले स नेवा सुचम बुख त ते बुख अलि नेवा मेतना हकि बुख थौ यको यको हे बुख त दु अलि बुख त त भने दक्ले नपा नेवा मिसा दबु या बुख छिक लागि ते थिना बछला गा चतुर्दशी शनिवार खुनु नेवा मिसा दबु या सोको गु त मुजे ज्याझो जुल ले त मुजे या उले ज्या मु पहा नेपाल वास एकेडेमी या चान्सलर अथे नेवा दे दबु या संग छेक भाजु मल्लकी सुन्दर जु याना दिगु ख नेवा दे दबु या नाय रश्मिला प्रजापति विशेष पहा कथ थ्यु बु ज्याझो ले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ या नाय पेमा हाल मुल्लामा नुदस मारो समिति या नाय प्रेम शान्ति तुलाधर ओ किफु नगरपालिका या मेयर कृष्णमान डुङ्गोल विशेष पहा कथ थ्यु ख अथे नेवा मिसा दबु या सल्लाहकार पि पूर्व मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य पूर्व सांसद सुशीला श्रेष्ठ अल अधे डेवलपमेंट सेक्टर यो कोहे जय नदी मा डेवलपमेंट विशेषज्ञ वेक इंदिरा श्रेष्ठ जु निवा मिसा दबुया पहिला नाम चाहिँ वेक नोकु अले निवा दे दबुया न पूर्व केन्द्रीय ज भीमला प्रधान साहित्यकार सुवर्ण केसरी चित्रकार व जलेश्वरी श्रेष्ठ पनि पाएको थ थ्यङ्गु ख ज्याझो स लस्ता पौन विमोचन जुल सोकोगु लस्ता पौ ख थो नापाममा नेवा मिसा कथमा चाहिँ हनेगु परम्परा कथ थुक्सी दिन तक्ल नापामा नेवा मिसा दिन कुसुम बज्राचार्य नापामा भलिबलका समी व प्रशिक्षक सलिना श्रेष्ठ यत नेवा मिसा दबु पाखे सम्मानित नयागु ख नापा छिदो दास सहित रत्नदेवी प्रजापति शिर्पा थुक्सी नेवा मिसा दबु यात हे हरिदेवी साहित्य शिर्पा अपर्णा प्रधान या त बिना देवी शिर्पा संकतर ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र या त लला त थो सोङ्गुल पाङ्गु शिर्पा चाहिँ अन्य नेवामी साधु बुनाबा आपद अतिथि विषय चाहिँ थमा पिनु बुनाले त बुझल रत्नदेवी प्रजापति शिर्पा नेवामी साधु बुया संस्थापक नाय रश्मिला प्रजापति माया नामे सुनत अगु खसा बिना देवी शिर्पा पूर्व नाय ध्यामला आवेक कस्तुरी श्रेष्ठ माया नामे ख अति हे हरिदेवी शिर्पा पूर्व सल्लाहकार जलेश्वरी श्रेष्ठ या मायु नामे चाहिँ सुनत अगु ख अलि नेवा मिसा दबली टुक्सी नुगो कार्य समिति न चयन जुल नुगो कार्य समिति मुक नि गुमेसीको कार्य समिति चयन जुल सा टुक्सी नाय या रूपे रमिता शाक्य बस्राचार्य जु वेको चाहिँ निर्विरोध निर्वाचित जुगु ख नि गुमहे निर्विरोध निर्वाचित जुगु ख नेवा मिसा दबु या विधान कथ सुई सोम केन्द्रीय समिति निर्वाचित जुगु कि मध्ये खुम मनोनयन जुई मागु तर मनोनयन जुई मयाको हे ठुक्सी यो को हे थो हे सोको गुताउ मजा लेगुदु अनुसार जमा नेपाल दुनिया नेगो प्रदेश मध्ये खुगु प्रदेश अलि अति हे सुईगो सिबेन अपो जिल्ला से प्रतिनिधित्व जुगु ख छौजके प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेश उपस्थिति मधु एज या मेगो खुगो प्रदेश लिए ढुङ्गलसा सुदूरपश्चिम प्रदेश या त अन वैम छ म केन्द्रीय उपाध्यक्ष व ज उथा चाहिँ खाली यतै त बुझ्नु यहाँ मुख होइन नि गुमेसी गु नगो कार्य समिति चयन जुगुदो अलि नाप उखुनु हे दि शनिबार यदि नुगो कार्य समिति दक्ले नपाङ्गो बैठक तसे सचिवालय न गठन ल्यागुदो आशया नेवा मिसा त सांस्कृतिक रूप मको आर्थिक अलि अथे सामाजिक नाप राजनीतिक रूप न्यौने यङ्केगु तातुना स्वन तगु थो नेवा मिसा दुगुन थगु आज पुङ्क ज्याया फै अलि ठुसी या सोकोगु अधिवेशन या त निर्वाचन समिति या भूमिका चाहिँ संयोजक नवीन थेचोमी अलि विमला प्रधान व अमीर मया रञ्जित चुपीसँग चाहिँ चुना निर्विरोध निर्वाचित यागु छगु चाहिँ लकस अन दिएको बुझ्ल वेकअप सकलसित योको योको सुभा अलि नाप नुगो कार्य समिति या नाय मेजु रमिता साक्य बज्राचार्य नाप मेपी निचा मेसित न योको योको मितना छिकपिनीको कार्यकालले नेवा मिसा दबु तस्क सकङ्क यहाँ भने फेमा दासे ज्याझो स तक्ले नापाङ्गु मेतेतेना ज्याझो नेपाले छ

Dr. Lasukusa Jazo Nepal is a Nepali Jazo Chinian Asunadilla, Radio Kantipur, Radio Rashtriya Chutha Radio Station, Jazo Napa the Good Life Biscuits, Alijiguna Karashmila, Jazo Pradik, Sonjanedi, Ravindra Chodri, Jazo Nepal is a Dr. Napango Bukhaji, Missa the Vir Bukhade, Missa the Wu, Dakadable, Egaraso, Sartista, Polistajo, Kato, the Amsati Rashtri Samutan, Ulaka Guda Diadata, Adrunde Chida, the Kulaska Pangani, Tosai. छठ कुनु अटगारे कसलाठो सस्ती कुनु पलिस्ता जुगुख ओगुनु चाहिँ बुदिना न्याकी देवामिसा दबुले छिन आबद्ध जुया दि मदुसा पछु छिया जपी सुनामिसा पि आबद्ध जुया दि मदुसा सिपिन आबद्ध जुया दिफु ओके लागे दिए दबुले फोन यानिसा देवामिसा दबुयु चाहि थौगे नम्बर आतको मरु व्यक्तिगत नम्बर छ दु तर मिसा दबु हरका दिए दबु या अफिसे दैगु ख ए जुया दिए दबुयु नम्बर ए फोन याना छि देवामिसा दबु बारे जानकारी न कय दिफु ओले देवामिसा दबुया थिथि थाया नाय पिनुगु नम्बर न कय दिफु जस्तै जिल्ला नाय नगर नाय पिनु न नम्बर कय दिफु फोन नम्बर ख 5369029 5369 ख दिए दबु नम्बर अलि दिए दबु नम्बर छिमे मेगो ज्याना छला दिजु नेवा दिए दबु धगा चाहिँ विशेषना जनजाति आदिवासी जनजाति कोटा छुन नेपाल सरकार बिगु कोटा चाहिँ छि अन कम्पिट या मासा नेवा दिए दबु सिफारिस यंका आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान चाहिँ अन सिफारिस के अलि सिरोले भन्मा नेवा दिए दबु नेवा ते त नेवा ख र गा चाहिँ सिफारिस यगु आधिकारिक संस्था जुल जे जस आज मेगु बुख पाखे भने त आयागु बुख ख मिसा साहित्यकार मुना मिजो पिन्त साहित्य वाचन यखल विशेष साहित्यकार मुनाया गोसाले आइतबार साहित्य वाचन वहना ज्याजो जुगुदु विशेषना मिसा साहित्यकार पिनी गुजक क्रियाकलाप निभया वया चंगु थो संस्था पाखे थोपाले विस्क सवाबी कथा गोसा खल मिसा साहित्यकार मुना मिजो तेत जक साहित्य वाचन याके बिगु ख गोसा खल या नाय विमल प्रभाव बुजराचार्य सभापति जुयादिगु थो ज्याजोले पुलाम प्राज्ञ लक्ष्मी माली मु पाहा कथ चाहदिगु ख ज्याजोले पुलाम प्राज्ञ ध्रुवमदि कमी साहित्य मिसा साहित्यकार मुनाया पुलामा नाय अञ्जना ताम्राकार साहित्यकार प्रतिसरा स्यामी विशेष पाहाको छ थिङ्गु ख ज्याजोले पुलामा साहित्यकार मंगला देवी स्थापित बज्राचार्य त सम्मान न यागु ख ज्याजोले कविन्द्र लाल प्रधान मानिक उडा सुधीर खोगी बसन्त नकमी ज्ञानेन्द्र रत्न बज्राचार्य नारद बज्राचार्य मंगल नारायण जोशी समान्त श्रेष्ठ नरेन मान महर्जन सञ्जय राज शर्मा श्रीराम श्रेष्ठ टुयुपुङ योगेन्द्र प्रधान धर्मराज राजकर्णिकार विमल ताम्राकार राधेश्याम महर्जन आर मनन्दर व सुरज बज्राचार्य पिस थथगु साहित्य वाचन यागु ख पकान नि विशेष चंगु ज्याजो हे झुलथे छु ज्याजो स मिसा साहित्यकार पनि कुमुना मिजो पिसक वाचन यागु थसे नपाङ्गु कथा या ज्याजो झुल थसागु अले मेजु मंगला देवी स्थापित बज्राचार्य वेक चाहिँ तस्मय पुलाम साहित्यकार थोङ्गोने वेक छ वेक ल छुया दिगु दु मधु मसिला वेक या भाजु अष्टमुनि बज्राचार्य वेक न नेपाल भाषा खेले तस्कहे त अदङ्गो योगदान या झाम ख वेक मदे दुङ्ला अले जी चाहिँ मंगला देवी स्थापित वेक या त मचा बले निसे मसि झाला छ जी स्कुल या टिचर वेक जीवनागु प्राइमरी स्कुल कृष्ण माध्यमिक विद्यालय रगा चाहिँ उले न्योखा डुगु स्कुल चाहिँ वेक अन पंका दि जी तिन क्लास तक बना जैसे मंगला देवी मिस या त योको योको मितु न लिपाको जोसा छिद साहित्य कार्य रूप फुलाम साहित्य कार्य रूप त मिसा साहित्य मुना शिर्पा हना दिएको छ ल ओके लागि चाहिँ योको योको छिद भिन्तु न अलि लसँग त्यसै जाजोसा जी आ मेगु मेसुना

Pardon, quatre heures, lorsque c'est déjà zone de parler, ça n'est pas les jazz au tigné national de l'art, le jazz au sa a, comme qui serait chita d'arrivée à tout le monde. On go boudaba, le gars de gobos la gai gade si connu, comme qui serait chita d'arrivée à sorti ou ni gogo, dika. Olivier Koya de l'Umangosi, ou qu'on me vide, jazz au tazula, le pal va sa police, ou titi ni va kyoya collapse à paki, titi jazz au tayasi, bekoya de l'Umangogo. Et calmati, doati sungu, comme qui serait chita d'arrivée à tout. Testuan de sana, ou saitik muzaina, budi hongudu. Kobi kisari dakase, veko yato, son undaiso tapanasa, tatkalin juju, mahindra, upadi lol hagu ka. Ale veko ongrezi, tarik on sarsa, undaiso ta, me undaise, zan mazuya dimaka. Ale veko jele hechuna, sugot soda of dahabu maha ka bebe klose, suya dimu ka. Le budava veko yajun purna kodu, bota kalmati tu. Que do si bine sa sa calme de suede sa que con weble jo pakhela ale si calme ti de gal o kolan ki pakhe weble de pa pakhela bo jun calme ti un mise chok do andale gedo wo paisa re se be ko eta swa de sa se so danzali bi se be ko eta lumang ki go dia jo jugo do ale na pa be ko eta lumang ka chogo virtual dia jo no julo साहित्य शिरोमणि चित्तधर हृदय सचिव निको बुदियालस्त नेपाल सम्बत 1146 अनलाथो पारु अटगादेगु से जस्ट 3 गते आइतबार खनु डब्लुडीबी या निहानि थया ज्याझोले चित्तधर हृदय जुमन्ती जुम प्रविधि पाखे छगु ज्याझोजुल डब्लुडीबी व हलिनेवा दबुया साहित्य क व नेपाल भाषा साहित्य दबुया मंका गोसाले जुगु थुगु ज्याझोले थनी ने छद निह निर्माण जुगु चित्तधर हृदय वृत्त चित्र भाषा सेवी विनय राजो बाधे पाखे किने ज्याझोगु ख हलिनेवा दबुया केन्द्रीय नाय मनोहर लाल श्रेष्ठ ज्याझोले लस्कु सियासे चित्तधर हृदय नेपाल भाषा साहित्य तदंग योगदान यान दिम जो मधुम व्यक्तित्व ख दया दिला मो वक्त धासम साहित्यकार लोचन तारा तुलाधर चित्तधर हृदय सुयादिगु जीव जात सफु या खे दुग्यंक दुवालेगु व पिवालेगु जायान दिला नुगा ख तेगु झोले वेकल थ गुरु योगवीर सिंह या उखेला थुकेला जुया चुंग छिना खमुना संपादन याना योग सुदा सफु पिकना दिगुनी तस्म तदंगु योगदान खन दे दिला थुगु ज्याझोले संगीत कवि सुरेन्द्र श्रेष्ठ चित्तधर हृदय बारे नेपाल रत्न राजभाई जपामी छुयादिगु मेना पाकुसी लसेहना नियंका नदिगु ख थोय ज्याझोले मेहालामी पवित्र कसा न चित्तधर हृदय वृत्त चित्र तयारी आया निधि कवि नवीन चित्रकार तस्क मेहनत याना ऐतिहासिक पला छिना दिगु खन यथना दिला अमेरिका या सिकागो चुनादीमा नाजाम साहित्यकार केशर मान थाम्राकार नुग खतेगु झोले चित्तधरिया जिगु जात या छगु बो कल्प वृक्ष दक्ले नापा ज दपति पिथने खगुली तस्क गौरवता दया दिल थो कथा थो ज्याझोले नेपाल भाषा साहित्य दबुया कजी राजभाई जकमी चित्तधर हृदय या छपु सिना खाउ बसे चित्तधर हृदय या साहित्यिक योगदान बारे दुग्यङ्क थगु विचार निभया दिल अथे थो ज्याझोले डब्लुडीबी कब या कजी नरेशके आ डब्लुडीबी कव व नेपाल भाषा साहित्य दबुया मङ्का गोसाले नेपाल भाषा या महारथी पिनेगु बुढी हनेगु व वेकअप पिनेगु व्यक्तित्व कृतित्व पिबेगु ज्याझो नापथे मध्य कन्याका मना बनेगु खन निस्ना दिल थुगु ज्याझोले नेपाल भाषा साहित्य दबुया लिउ कजी कवयत्री प्रतिसरा स्यामी चित्तधर चोयादिगु यसो धराया मुले राहुल नागो छिनाख निङका जुमे बुद्धि कयादिबी सकसित सुभ्याबिया दिल डब्लुडीबी ज्याझो न्याकामी विद्या दली न्याकादिगु थुगु ज्याझोले हलिनेवा दबुया संरक्षक सिजन श्रेष्ठ पौवा स्यामी अञ्जना तम्लाकार शङ्करलाल राजकर्णिका तीर्थ मैया पिरिगुन उपस्थिति दुगु ख आफ्नो सपाछि कवि केसरी चित्तधरले दया तलुमुङको से वेको या सचिव निको निको गो 120 को गो बुद्धि चाहिँ या ले चाहिँ वेको यसको आँख्न लुबङ्के पका आ खलाबले चाहिँ तसको अबुझि त मलाई आला तसको हे अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता त जुगु जुल ऊ इले सचिव लगभग सचि द थियो म थियो न्यो ध्यान मलाई मलाई वेको ल्यामा चाहिँ इले जब चाहिँ राणा शासन इले चाहिँ गुरी थाको होला उसले मनु त्यता आखजको भने ससा झिले तैगु थगु भ्या नेपाल भाषासँग लासा झिले तैगु चिसँग यो को अजाको खतनी नभएछ नि यसै वेको पिनको योगदान हे झि नेवा त थन थियो ख
지구 네와 바사이디 둘이 자이 व्यापक रूपमा उभङको ख अझन नेवा भाषाइति या त संरचना लागि युको युको ज्यायामा आगो दु र थजागो पर्चियोले सा वा भौतिक सा ज्यायाना वेक अप इन त लुमंग कुसे नोगो पुस्ता या पिन त वेक अप इनको योगदान या बारे चर्चा न छिस याना म भनिमा तासिन जाजो सा हकलम मेगो सफ मिसवा

लिपाङ्गुति पादुङ्गा आफ्नो लसकुसा ज्याझो नेपाले छ नेपाले ज्याझो छिङ्गेना सुना दिल झिगुना खरस मिला डक्ले लिपा थन न्युगु बुख तेते ना लापाङ्गु बुख ख ख्वापा प्याखौ बारे बिना जोशिया बृहत ग्रन्थ नेवास समाज या गोसाले वरिष्ठ नृत्य गुरु भिना जोशी राज भण्डारी चोयादिगु नेवार समुदायको मुकुन्द नाच नायागु सफु आइतबार थिथि ख्यो या परम्परागत गुरुपी पाखेचिकी फेनी याना उले ज्याझो बुधु यहाँ नेपाल पुलिस क्लब हलेजु उजु उगु ज्याझो गोसा खलाया नाय नानी काजी साके या सभा नायसिजु खुख पितुबुज्या ज्याझोले मरुपी गुरुपिनी गुलुमन्थी मौन धारण यागु ख ज्याझोले दक्ले नापा वरिष्ठ नाट्य गुरु वरिष्ठ नृत्य नाटक गुरु बिना जोशी राज भण्डारी पाखे गुरु वन्दना यनादिगु खसा झिन्म गुरुपिन्त बेताली चिका सम्मान न यागु ख सभापति नानी काजी साके लस्कुस नोचु तयादिगु उगु ज्याझोले झिन्म गुरुपी पाखे नेवार समुदायको मुकुन्द नाच सफु सामूहिक रूपमा उल्लेजायागु ख नृत्यविद बिना जोशी विद्वान यज्ञपति मान बज्राचार्य डाक्टर दुर्वेश चन्द्र रेग्मी संस्कृतिविद हरिराम जोशी पिन्स सफु या तपाईँ ख तगु खसा ज्याझोले श्वेत वर्ण आर्य वोलेओ कितेश्वरिया सरिया बज्राचार्य बज्रयोगिनी चर्या नृत्य प्रमिला रघुवंशी तुलसी मलो खल पाखे जय भैरव प्याख व नागासा प्याखन निभोगु ख थो सफु मुखेना चाहिँ बिना जोशी जुन चोइत दिएगु सफु तस्क हे व्यक्ल थगु जीवन जोशी हे अनुसन्धान याना व्यक्ल चाहिँ चोया दिगु ख थो सफु चाहिँ 1500 पृष्ठ या ग्रन्थ ख सफु शिवेन ग्रन्थे दासा जिल्ला मला चे छद दे रुङ्ल व्यक व्यक्ल चाहिँ नियदम्बिक चाहिँ चोया दिगु सफु ख 2026 साल निशे चाहिँ वो ग्रन्थ चुएत व्यक्ल अध्ययन सुरुयान दिगु ख झिन्नेगु खण्डे विभाजित उगु ग्रन्थ नेवार समुदायका परम्परागत मुकुन्द नाच चरिया नृत्य कार्तिक नाच गथु प्याख देवी नाच महाकाली नाच नीलबाराही नाच भैरव नाच श्वेतकाली नाच सिकाली प्याख आकाश भैरव नाच लाखम नाच निसे भक्तपुर बागलुङ बेनी व कुस्मा या हनुमान नाच तक या विविध सांस्कृतिक नृत्य परम्परा या विस्तृत अध्ययन हुन चाहिँ दुगुजुर संस्कृति शिरोमणि हरिराम जोशी भनाएको ठाउँ चाहिँ थो ग्रन्थे परम्परागत मुकुन्द नाच बारे चाहिँ बृहत शल्यक्रिया हे यहाँ तगुदो थन नेत भुलु अजिमाया मूल गुरु देवकृष्ण महर्जन किलागल देवीनाथ या मूल गुरु ब्रह्मु महर्जन सिकाली प्याखया मूल गुरु महन्तलाल डुङ्गोल जल प्याखया मूल गुरु धनबहादुर महर्जन किर्तिपुर इन्द्रायणी देवी प्याखया मूल गुरु बेखालाल माली थेचो इन्द्रायणी देवी नाच या मूल गुरु धर्मराज माली काठमाडौँ गथु प्याखया नृत्य गुरु सूर्य नारायण मालाकार ललितपुर कार्तिक नाच या परम्परागत गुरु प्रतापधर शर्मा संस्कृत शिरोमणि हरिराम जोशी चर्या संस्कृतिविद यज्ञमानपति वज्राचार्य चर्या नृत्य गुरु पद्मराज वज्राचार्य हेमवज्र वज्राचार्य पिस संयुक्त रूप थो ग्रन्थ लोकार्पण यागोजल अहिले वेकुले चाहिँ वेक ग्रन्थ या चोमी बिना जोशी दैदी कथा चाहिँ नापा निसे हे थो मिसा पिसा प्याखली चाहिँ मख होला ये या खनाएको खस 2016 साल लिपा निसिन्छ हे मिसापी प्याखनी खङ्गु ख हुन साजु थासे प्याखनी तल अझ अप यी कालर खासै नयाँ दिवे खोला तस्क हे त रङ्गु सफुजुल झिन यास होला पेजेस ढुका अहिले सफु न ढेडो खाउके या मु तर उखुनु चाहिँ यादो ल त बुझुल ओ सफु यदि छिपेन त न इतिहास विशेष मुकुन्द नाचबारे छुख छिपिन त मास चाहिँ थो सफु छिपिस नकया दिफु सफुया लागि चाहिँ गर्नु सम्पर्क यहाँ दिउले छिनिरहेका थाइपले यल नेवाज समाज चाहिँ सम्पर्क यहाँ दिफु आदप्रे लिपाङ्गो बुख थौँ लागि त्यहाँ खिपुली रिडम अफ ट्रेडिसन कल्चरल एक्सचेन्ज थाको ज्याझ कुच्छाको दो यी महानगरपालिका 12 स्थानीय निकाय आर्थिक ग्वाली पाख निहेनु या दाफा सङ्गीत कालबिल ताल व परम्परा ज्याझो यहाँ ब्रह्मत्वाय थिए श्री श्वेत भैरव बाजाउ खल व किपु नगरपालिका 10 तननी त्वाया तननी दाफा खलया दथी जुगु ख नेनुया थिथि दाफा सङ्गीत दाफा भजन बाँसुरी धिमे बोल्या धुन मेत थ थवे
अन्तर्क्रियात्मक रूपमा कालबिल व सेकेगो सिनेगो कार्यशालायाना लिपाङ्गो दि ज्येष्ठ दुई गते शनिबार वडैल्या दस या सामुदायिक भवन बजायना उज्याझो समापन आगो ख उज्याझोले श्वेत भैरव खलाया दुजपिङ किपुया तननि आँखा छि निथा उपस्थित जुया यहाँ हालिगो दाफा भजन किपुली सेनेगो जयागो खसा तननि दाफा खला पाखेना तननि दाफा खलाया मिसा दुजपिङ छ सूचना यागो देवी प्याख्ने आधारित मे सेने जयाना मे कालबिल याना सेकिगु सेनेगु जयागु ख बासुरी बादरे न नि छकोगु शताब्दी आधुनिक युग नोटेशन बासुरी पिबले हाफ नोट व फुल नोट या त गुर कथा क्यागु व बासुरी पिबले मेया भावना कथा पिगु तरिका श्वेत भैरव या गुरु नीतिक ढंगोला सेना दिगु जयागु खस तनानि दाफ खला या बासुरी बादक पिस नुगु खसेकिगु थ्विकिगु अनुभव जीव ख कंगुजला तो दाफा वजन दई छि त खहे पुलांग उजला हला छि गुली आज किसा चाहिँ हला होइ छंगो तर दाफा वजन चाहिँ यो कोहे भात भाय खंग त लाल छ हामी न मिथिला भाना दई जु आज यस नि संस्कृत न दई खनी हिन्दी न दई खनी नेपाली न दई खनी तर यहाँ छ थो दाफा वजन बारे बृहत रूप अध्ययन अनुसन्धान यसै छिगो जुन मूल दई नि व जुन डिस्टोर्ट मजुको मूल दाफा वो चाहिँ मालेगु त खहे आवश्यक तर ओके लागि दासा योको अनुसन्धानकर्ता पनि मालिकको योको हे राशि मालिकको वजा चाहिँ सुनागु देखेजी दासले थौया ज्याझ नेपाली पाखे नजिक भनेको इजुला निनामी भाजु मेजु पनि ज्याझ छिङ्गेना दिगुले योको शुभ जी रश्मिला दा